0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
4: You're listening to
5: Non-Stop Hits.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
0: City FM 89. We are playing your song.
3: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
4: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
7: Non-stop

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: City FM 89, we're playing your song.
5: Everybody go.
6: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back.
8: Starts now.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: City FM 89.
4: You're listening to
5: Non-Stop Hits.

0: groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 2:30 PM.
3: City FM 89.
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैस कैश।
5: City FM 89, we're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
6: No talk.
7: Just you
6: and the music.
7: Back to back
6: starts now.

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 3:30 p.m.
3: City FM
1: 89.
4: Brand new Honda City चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी. सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका. तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
1: City FM 89,
2: your drive along companion.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
5: No talk.
6: Just you
5: and the music.
6: Back to back
5: starts now.
7: Chica chica, Louis Bellin chica. Tiani bomba bomba tomica.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 4 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Hit HBO Max medical series The Pitt has left behind all shows with a whopping 25 Emmy nominations, including Outstanding Drama and 13 Acting Noms, with star Noah Wyle up for lead actor. This is nearly double from last year's 13 nominations for the show.
7: City FM 89.
8: क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हम 24% तक मसल मास खो सकते हैं? इसलिए इंश्योर, जिसमें मौजूद 25 जरूरी विटामिंस और मिनरल्स रखे आपकी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी को अप टू द मार्क. इंश्योर, क्लिनिकली प्रूवन टू इंप्रूव मसल स्ट्रेंथ इन 90 डेज.
1: City FM 89. You're listening to
4: Non-Stop Hits.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 5:30 PM.
2: City FM 89.
4: Brand new Honda City chahiye hai. बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
5: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
0: You're listening to
2: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
6: That was Peggy Goo, Ira Star Woman. I love Peggy Goo's music. She's very disco house. It just reminds me, even though it's disco house, you would think 70s, but it reminds me of like movies in the early 90s. I love. All right, our second Joe song of the playlist, this time with G-Unit, Ride With You.

0: Groove along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है, बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: सिटी एफएम 89, वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग।
5: You're listening to
6: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
7: Welcome back to Full Disclosure. Yet another throwback. Here is Miss Aaliyah with Try Again.
8: It's been a long

0: antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 6:30 p.m. City FM 89. We're playing the song.
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
4: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर। इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
1: You're listening to
6: Full Disclosure with Saba Banu Malik.
7: Welcome back to Full Disclosure, our second Ariana Grande of the playlist, this time with Hate That I Made You Love Me.

0: फायर नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर। इसकी आईओटी टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1,00,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: नाज़रीन, ताज़ातरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
5: सिटी एफएम 89 साउंड्स डिफरेंट।
6: यू आर लिसनिंग टू
7: फुल डिस्क्लोजर विद सबा बानो मलिक।

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: It's 7 p.m.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Coming up next.
1: Non-stop hits. City FM 89.
6: Trending today.
7: Hit HBO Max medical series The Pitt has left behind all shows with a whopping 25 Emmy nominations, including Outstanding Drama and 13 Acting Noms, with star Noah Wyle up for lead actor. This is nearly double from last year's 13 nominations for the show.
6: City FM 89.
8: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
9: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। With Yellow by Jazz Cash.
1: City FM 89.
10: Brand new Honda City चाहिए है? बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीते ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक, आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका। तो फिर देर कैसी, क्या पता अगले विनर आप ही हो। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
8: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: यू आर लिसनिंग टू सिटी एफएम 89। वी आर प्लेइंग
11: योर सॉन्ग।
12: नो टॉक, नो टॉक, नो टॉक, नो टॉक, नो टॉक, जस्ट यू एंड द म्यूजिक। बैक टू बैक स्टार्ट्स नाउ।

0: the perfect antidote to your road rage. Your road rage.
1: City FM 89.
2: ब्रांड न्यू होंडा सिटी चाहिए है बस 20 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 1 लाख रुपए का बैलेंस मेंटेन करें और लकी ड्रॉ में जीतें ब्रांड न्यू होंडा सिटी सिर्फ यही नहीं अपने इजी पैसा अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करके पाएं ईवी बाइक आईफोन और आईपैड्स जीतने का मौका तो फिर देर कैसी क्या पता अगले विनर आप ही हो इजी पैसा डिजिटल बैंक इजी वाला बैंक
3: Higher No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No frost, no worries.
4: Ab apni pasand ki shopping karte hue bill ki tension kyun? Bas apne favorite store par jao aur yellow QR scan karke 3 easy installments mein apna bill clear karo. To jo chahe kharido, paise aaram se de do with Yellow by Jazz Cash.
5: City FM 89. We're playing your song.
0: You're listening to
1: Nonstop Hits.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मेल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
5: City FM 89, we're playing your song.
6: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
8: No talk.
9: Just you
8: and the music.
9: Back to back
8: starts now.

0: City FM 89. It's 8 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: City FM 89.
3: Trending today.
4: Hit HBO Max medical series The Pitt has left behind all shows with a whopping 25 Emmy nominations, including Outstanding Drama and 13 Acting Noms, with star Noah Wyle up for lead actor. This is nearly double from last year's 13 nominations for the show.
5: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
6: सिटी एफएम 89.
7: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. विद येलो बाय जैज कैश.
8: वी आर
9: सिटी एफएम 89.
8: यू आर लिसनिंग टू
10: नॉन स्टॉप हिट्स.
11: नो टॉक. जस्ट यू एंड द म्यूजिक. बैक टू बैक स्टार्ट्स नाउ.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
5: Your drive along companion.
6: You're listening to
7: Non-Stop Hits.
8: Everything begins with consciousness.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
4: सिटी एफएम 89।
5: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
6: दिस इज सिटी एफएम 89।
7: अटेंशन, द स्टैंडर्ड कम्यूट हैज बीन डीकमिशन्ड।
8: Introducing a system override for your ears.
9: New energy, new perspective.
10: The same 24 hours, but a completely different vibe.
11: Join ABD as he takes over the streets.
12: Whether you're stuck in the third lane or finishing that final email,
13: your evenings just got an upgrade.
11: The rush hour with ABD.
14: Weekdays, 5 p.m. to 8 p.m.
13: Tune in or get left behind.
0: You're listening to
2: Non-Stop Hits.

0: launch your song.
1: Only on City FM 89.
2: It's 9 PM.
3: This time check is brought to you by Jazz.
4: City FM 89.
5: Trending today.
6: Hit HBO Max medical series The Pitt has left behind all shows with a whopping 25 Emmy nominations, including Outstanding Drama and 13 Acting Noms, with star Noah Wyle up for lead actor. This is nearly double from last year's 13 nominations for the show.
7: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
8: सिटी एफएम 89.
9: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो. तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो. विद येलो बाय जैज कैश.
10: We're playing your song.
1: You're listening to
11: Non-stop hits.
12: No talk.
13: Just you and the music.
14: Back to back starts now.

0: perfect antidote to your road rage. City FM 89.
1: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और ये लो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। With Yellow by Jazz Cash.
2: City FM 89.
3: On the dial.
4: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
0: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
5: A new era begins.
6: City FM 89.
3: You're listening to
7: Non-Stop Hits.

0: 89. It's 9:30 p.m. City FM 89.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो। तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज कैश।
3: यू आर लिसनिंग टू सिटी FM 89।
0: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग। यू आर लिसनिंग टू
4: नॉन स्टॉप हिट्स।
5: No talk.
6: Just you
5: and the music.
6: Back to back
5: starts now.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। Life Boy Anti Dandruff Shampoo with Yogurt and Egg. 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो। विद येलो बाय जैस कैश।
4: City FM 89.
5: You're listening to
6: Beach Camp.

0: perfect antidote to your road rage.
1: Your road rage.
2: City FM 89.
3: It's 10:30 p.m. FM 89.
4: You got me going crazy.
5: Text pay karna ab hua aasan. Abhi Jazz Cash app download kare aur apna text pay karke lucky draw mein shamil ho jaye aur jeete electric scooter. Aasan payments aur exciting rewards ke liye Jazz Cash hai na.
2: You're listening to City FM 89.
6: अब अपनी पसंद की शॉपिंग करते हुए बिल की टेंशन क्यों? बस अपने फेवरेट स्टोर पर जाओ और येलो QR स्कैन करके 3 इजी इंस्टॉलमेंट्स में अपना बिल क्लियर करो, तो जो चाहे खरीदो, पैसे आराम से दे दो विद येलो बाय जैज़ कैश.
2: City FM 89, we're playing your song.
0: You're listening to
7: Beach Camp.

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: You are listening to City FM 89.
5: We are playing your song.
6: When I grow up, I want to be strong.
7: For many children in Pakistan, that chance is already slipping away. 4 in 10 children under 5 suffer from stunting.
6: I want to learn big things.
7: Yet more than half of our children lack essential nutrients like iron, vitamin A, and zinc, affecting how they grow, think, and learn.
6: I want to be the fastest.
7: And nearly 1 in 6 children suffer from wasting, a severe form of malnutrition that weakens growing bodies.
6: I want to grow up like everyone else.
7: Because every child deserves a chance to grow, learn, and thrive. Act now for the foundations of our nation.
4: Nurture today, strengthen tomorrow.
7: Act, a Dawn Media initiative.
8: City 89.
7: You're listening to
9: Beat Camp.